छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों के नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही है। महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत 3 भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के 2 भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: फेसबुक इन स्काई, व्हाट्सएप इन लाइफ, मन मोर काम, इतनो आराम, सो स्टार्ट अप योर डे विद रेनबो फन डे। रेनबो फन डे,
2: रेनबो फन डे, रेनबो फन डे,
1: म्यूजिकल सा

0: The Commonwealth Games. जोश, जुनून और जज्बा, कहने के लिए तो सिर्फ तीन शब्द हैं, पर इन शब्दों में जान डालते हैं हमारे देश के खिलाड़ी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे प्रतिष्ठित खेलों में अपनी मेहनत और शिद्दत से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। नमस्कार, ग्लासगो में हो रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के आठवें दिन के अपडेट्स के साथ हम अपने सभी श्रोताओं का आकाशवाणी में स्वागत करते हैं।
1: खेलों का आठवां दिन भारत पांच स्पर्धाओं में था। भारोत्तोलन की स्पर्धाएं कल समाप्त हो गईं। भारोत्तोलकों ने भारत को कई पदक दिलाए, लेकिन खेल प्रेमियों की इच्छाएं तो हमेशा और ज्यादा की ही रहती हैं। कल से ही ट्रैक साइकिलिंग की स्पर्धाएं आरंभ हो गईं, सामान्य ट्रैक और पैरा ट्रैक दोनों ही, लेकिन सारी निगाहें थी एथलेटिक्स पर। सुपरस्टार नीरज चोपड़ा सहित कई भारतीय सितारे ट्रैक और फील्ड की स्पर्धाओं में थे। किसी को क्वालिफाई करना था तो किसी को मेडल के लिए मशक्कत करनी थी। कैसा रहा आठवां दिन, पेश है सारा विवरण।
0: This was not just a day that gave every Indian a reason to smile, but rather it also gave every Indian a reason to feel proud of for forever. Indian weightlifter Lovpreet Singh secured a silver medal with a historic record-breaking performance on day 8 of the 2026 Glasgow Commonwealth Games. Lovpreet Singh claimed the silver medal in the heaviest men's division after a phenomenal tactical battle. After initially taking a commanding lead during the snatch segment by successfully clearing 176 kilogram, he held off intense competition to claim his podium finish. Let me also tell all our listeners that Lovpreet Singh had snatched the heaviest snatch in Indian weightlifting history, and that was a 176 kilograms. He executed a clean and composed 212 kilogram lift in the clean and jerk segment. This brought his combined total to 388 kilogram, setting a brand new Indian national record. Born on September 6, 1997 in Bal Sachandar village, Amritsar, Punjab, Lovpreet Singh comes from a humble family. Inspired by local weightlifters, he began weightlifting in 2010 at the age of 13 under the guidance of local coaches. Despite financial hardships, his determination and disciplined training helped him progress steadily through the junior and senior ranks. Commonwealth Weightlifting Championship 2022 Gold, Commonwealth Games 2022 Bronze, Commonwealth Weightlifting Championship 2021 Silver, 5th place in the Asian Championship 2026 with a personal best performance of a total of 386 kilograms. And now, Glasgow Commonwealth Games 2026, a silver medal for India. The gold was secured by New Zealand's David Andrew Lithi with a total of 389 points. While on one hand, India got a reason to rejoice at midnight, on the other hand, India also found a reason

0: of heartbreak in Martina Devi's performance in the women's 86 kilogram finals. The 20-year-old Manipuri prodigy Martina Devi Maibam finished 5th overall on her Commonwealth Games debut. The performance of the Indian weightlifters at Glasgow Commonwealth Games 2026 has been nothing short of exemplary. This journey started with Mirabai Chanu getting us the gold in women's 48 kilogram category. Then came Gyaneshwari Yadav getting us the silver in women's 53 kilogram category. Then came Bindya Rani Devi getting us the bronze in women's 58 kilogram category. After that, there was Harjinder Kaur getting us the silver in women's 69 kilogram category. After that, there was Rishikanta Singh, who got us the silver in men's 60 kilogram category. Raja Muthupandi got us the silver in men's 65 kilogram category. Ajaya Babu got us the silver in men's 79 kilogram category. And then came Lovepreet Singh, who got silver in men's 110 kilogram category.
1: एथलेटिक्स में सारी निगाहें थी नीरज चोपड़ा, शॉटपुट में तेजिंदर सिंह टूर और 5000 मीटर में पारुल चौधरी पर। सुबह के सत्र का केंद्र थे भारत के लाडले जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, 2018 गेम्स के स्वर्ण पदकधारी, पिछले गेम्स में चोट की वजह से नहीं आ पाए थे। ओलंपिक के विजेता, विश्व विजेता, एशियन गेम्स के विजेता, अलंकरण ही अलंकरण, लेकिन बीते समय चोट के शिकार रहे। करीब 9 महीने मैदान से दूर रहे वो। वापसी के बाद प्रदर्शन में अपनी पुरानी लय की खोज में दिखते रह रहे हैं। यहाँ इस स्पर्धा में मुकाबला खासा तगड़ा है उनके लिए। पाकिस्तान के अरशद नदीम, श्रीलंका के रोमेश थरांगा और हमवतन रोहित और यशवीर तो हैं ही। नीरज, रोहित यादव और यशवीर सिंह तीनों ने ही क्वालिफाई कर लिया फाइनल्स के लिए। हाँ, जो दूरी उनके भालों ने नापी वो कागज पर उतनी शानदार नहीं लग रही। नीरज ने दूसरे प्रयास में 79.61 मीटर भाला फेंका, जबकि 85 से ऊपर तो वो जब चाहे तब फेंक दिया करते थे। ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मार्क था 84 मीटर, तो उनका ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन ठहरिए, 18 क्वालिफायर्स में से कोई भी ये मार्क हासिल नहीं कर पाया। नीरज ने बाद में कहा कि तेज हवा और ठंडक सभी भाला फेंकने वालों के लिए कठिन माहौल पैदा कर रही थी।
2: That throw was okay, like 79 meter throw, and the goal was to go in the final and give my best in the final. So I'm happy with the throw. Yeah, conditions are not best for javelin throwers. Not only cold, but it's really windy, and wind was also not in the front. Sometimes it's from side, and it's really hard to process. Like where we have to throw. We are happy that all three Indians are in the final.
1: तो अब निगाहें रहेंगी फाइनल में कि नीरज वहाँ पर उनका भाला लक्ष्य भेदने में सफल रहे। लेकिन कल का सबसे यादगार प्रदर्शन आया डिस्कस थ्रो में, महिलाओं की चक्का फेंक। सीमा कालीरम्मा ने अपना हालिया शानदार प्रदर्शन जारी रखा और कांस्य पदक हासिल किया। इस प्रतियोगिता में सीमा और निधि रानी के रूप में भारतीय चुनौती थी। शुरू से ही वो तीसरे और चौथे स्थान पर रही और सीमा ने अपने तीसरे प्रयास में 58.65 मीटर की दूरी नापी तो निधि का चक्का 57.10 मीटर तक गया और ये स्थिति उन दोनों ने अंत तक बनाए रखी। हालांकि इसके बाद के सारे थ्रो सीमा के फाउल हो गए, लेकिन तब भी ये जो प्रयास तीसरा था वो उन्हें कांस्य पदक दिला गया। निधि रानी चौथे स्थान पर आई। सीमा एक जीवंत उदाहरण है स्त्री शक्ति की ताकत का। मातृत्व के कारण उन्होंने अवकाश लिया, कुछ दिन बिल्कुल अभ्यास से दूर रहीं, उसके बाद वापसी की, मैदान पर आई और अपनी पुरानी लय हासिल की, बल्कि उससे बेहतर। साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल, डॉक्टरेट कर रही हैं। सलाम है सीमा आपको। नीरज के बाद जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा थी वो थे तेजिंदर सिंह टूर। शॉटपट में पदक की उम्मीद के साथ उतरे, दो बार के एशियाई गेम्स और एशियाई चैंपियन। उनके साथ थे समरदीप सिंह गिल। प्रतियोगिता की शुरुआत हुई, टूर ने कोशिश तो बहुत की लेकिन गोला 20 मीटर के आसपास ही जा पा रहा था उनका। तीसरे प्रयास में 20.27 मीटर फेंका उन्होंने, जो उनका कल का सबसे अच्छा थ्रो रहा, लेकिन ये काफी नहीं था पदक के लिए। वे पांचवें स्थान पर रहे, तो समरदीप सिंह गिल को ये संतोष अवश्य रहेगा कि उन्होंने भी 20 मीटर की दूरी पार कर ली। उनका बेस्ट थ्रो रहा 20.23 मीटर और वो सातवें स्थान पर आए। स्वर्ण नाइजीरिया के चुक वेयमबुका ने जीता 21.07 मीटर के थ्रो के साथ। 200 मीटर में अनिमेश कुजूर सेमीफाइनल चक्र में ही बाहर हो गए, 20.65 सेकंड का समय और उनसे बहुत पीछे था। कुल मिलाकर वो 17वें स्थान पर रहे। सुबह के सत्र का शानदार प्रदर्शन रहा पुरुषों के ट्रिपल जंप स्पर्धा में। प्रवीण चित्रावल दूसरे स्थान पर रहे 16.41 मीटर की कूद के साथ, तो उनके साथी सेल्वा प्रभु तीसरे स्थान पर आए।

0: 16.26 मीटर के साथ और उन्होंने ट्रिपल जंप में पदक की आशाएं जागृत कर दी हैं। 400 मीटर में क्वालिफाई करने वाले विशाल टीके कल सेमीफाइनल में 46.33 सेकंड के समय के साथ छठे स्थान पर रहे और कुल मिलाकर 14वें स्थान पर सरक गए। पारुल चौधरी एक दिन पहले 3000 मीटर स्टीपल चेस की दौड़ को भुलाने के इरादे से मैदान में उतरी, लेकिन ये रेस उनका दर्द और बढ़ा गई। 15:08.56 सेकंड के साथ वो 13वें स्थान पर रही। हाँ, डेकथलान में तेजस्विन शंकर ने कल 5 स्पर्धाएं पूरी कर ली और पदक की होड़ में बने हुए हैं 4,339 अंकों के साथ। अपनी प्रिय लॉन्ग जंप स्पर्धा में तो वो टॉपर रहे और दिन समाप्त होने तक दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। अगर आज ये प्रदर्शन जारी रखवाते हैं तो निश्चित तौर पर पदक उनका इंतजार कर रहा है। और भारतीय दल से उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ के CEO रघुराम अय्यर।
1: आई थिंक इट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू द कॉमनवेल्थ गेम्स। वी हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड 15 मेडल्स सो फार एंड द नेक्स्ट 3 or 4 days वी हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग बाउट्स कमिंग अप। देयर आर 8 or 10 ऑफ द बॉक्सर्स हु मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। देयर आर वेटलिफ्टर्स एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज द मेगा इवेंट ऑफ जैवलिन एंड द ट्रैक एंड फील्ड एज वेल। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ हेल्दी टैली ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द closing ceremony.
2: On day 8, India's historic debut in para-track cycling at the Glasgow Commonwealth Games was highlighted by an inspiring performance from 16-year-old sensation Lisha Das. Hailing from Tezpur, Assam, the class 11 student took to the track at the Sir Chris Hoy Velodrome to become the first ever para-athlete from Assam to qualify for the Commonwealth Games. Competing in the high-octane women's C4-C5 4,000-meter individual pursuit qualification round, her debut marked a monumental step forward for Indian paracycling on the world stage, despite missing out on a spot in the final medal rounds.
0: इन खेलों में साइकिलिंग की स्पर्धा में सिर्फ ट्रैक साइकिलिंग ही है, रोड रेसेस और माउंटेन बाइक शामिल नहीं है। सर क्रिस हॉय वेलोड्रोम में ट्रैक साइकिलिंग का कल पहला दिन था और 6 स्वर्ण पदक दांव पर थे। भारत भी इनमें से एक पर अपना दांव लगा रहा था। पुरुष टीम स्प्रिंट, भारतीय टीम 6 और देशों के मुकाबले थी। 3 साइकिलिस्ट वेलोड्रोम ट्रैक का एक एक लैप पूरा करते हैं लगातार एक एक करके। टीम ने कोशिश तो बहुत की लेकिन अंतिम पायदान पर ही आ सकी। एवरेज स्पीड रही 58.195 किलोमीटर प्रति घंटा। रोनाल्डो सिंह लाइथोन जंप, डेविड बेकहम और रोनजीत सिंह यांगलेम। अंतिम आना भी इस मायने में दिलासा देता है कि भारतीय साइकिलिंग अब विश्व स्तर पर प्रवेश कर चुकी है। आज खेलों का नवा दिन खासा सरगर्म रहने वाला है। बॉक्सिंग में 10 पदक पहले ही पक्के हो चुके हैं, लेकिन पदक का रंग बेहतर करने के इरादे से सभी 10 बॉक्सर्स कल सेमीफाइनल में रिंग में उतरेंगे। महिलाओं में प्रीति, जैस्मिन, अरुंधति, प्रिया, साक्षी और लवलीना बोरगोहेन। और पुरुषों की बात करें तो उसमें सचिन होंगे, नरेंद्र होंगे, अंकुश होंगे और होंगे जादूमणि। देखना है इनमें से कितने बॉक्सर्स फाइनल में प्रवेश पाते हैं। मुक्केबाजी में भारत की उम्मीदों के बारे में बता रहे हैं भारतीय बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष अजय सिंह।
3: देखिए 14 इवेंट है टोटल हमारे बॉक्सिंग में और 7 लड़के और 7 लड़कियां, तो हमें लगता है कि जो आज तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस हमारा रहा है वो गोल्ड कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, जब हमारे 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज आए थे। मुझे लगता है कि उससे बेहतर परफॉर्मेंस हमारा इस बार होगा।
2: इन जूडो देयर विल बी द मेंस 60 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 इन विच हर्ष सिंह विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। देयर विल बी वुमेन्स 52 किलोग्राम राउंड ऑफ 16 in which Shraddha Kadubal Chopade shall be representing India. There will be men's 66 kilogram round of 16 in which Rohit Basir Majgul shall be representing India. Then there will be women's 48 kilogram event quarterfinals in which Ashmita Day will be representing India. Then there will be women's 57 kilogram quarterfinal event in which Yamini Maurya shall be representing India.
0: Athletics mein decathlon ki spardhaen jari rahengi. Tejaswin Shankar padak ki hol mein baki bachi 5 स्पर्धाओं में उतरेंगे। मिक्स 4x400 रिले होगी जिसमें अंशु बाबू, नीरू पाठक, रशदीप कौर और विशाल टीके, 400 मीटर हर्डल्स में यशाश पलाक्ष और संतोष कुमार टी मैदान में उतरेंगे।
2: In track cycling, there will be men's 4,000 meter individual pursuit event in which Dinesh Kumar and Harshveer Singh Sekha shall be representing India. There will be men's Keirin first round events in which Ronaldo Singh, David Beckham and James

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्युझिकली योर्स।
1: श्रोते, नुकताच आपण कार्यक्रम ऐकलात अज्ञात मुंबई। 7:59 झालेली आहेत आणि कार्यक्रमातून निरोप घेण्याची वेळ झालेली आहे। ठीक 8 दिल्ली केंद्राहून प्रसारित होणाऱ्या हिंदीतून बातम्या, 8:15 इंग्रजी बातम्या आणि 8:30 पुणे केंद्राहून मराठीतून बातम्या सहक्षेपित होणार आहे। त्यानंतर हिंदी कार्यक्रम घेऊन हिंदी आरजे आपल्यासोबत असणार आहेच। याशिवाय एफएम गोल्डला आरजे दीप्ती आणि रेनबोच्या दुपारच्या सत्रात आरजे दुहिता आपल्यासोबत असणार आहे। पहाटे 5 पासून ते आतापर्यंत अनेक श्रोत्यांनी कार्यक्रमात सहभागी होऊन कार्यक्रम आवडल्याची पुचपावती दिलेली आहे, त्याबद्दल सगळ्या श्रोत्यांचे मनपूर्वक आभार। पुन्हा एकदा भेटणार आहोत नवीन विषयासह नवीन उत्साहात। तोपर्यंत स्वप्नाला इथंच अनुमती द्या। धन्यवाद।
0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्युझिकली योर्स।
2: सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुच्छेद साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए

0: की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
3: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
4: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
0: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरों मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश जोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह

0: रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ है हमारी संवाददाता।
2: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आनंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
3: The reality of life is that everything has a beginning.
4: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
1: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को

0: मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं, असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोक सत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पत्र लिखता है कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Parliament passes Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill with stricter punishment for paper leaks. Prime Minister Narendra Modi welcomes passage of the bill, saying it will make examination system more robust. Saudi Arabia and 13 other countries announce Maritime Defence Alliance to protect shipping in key waterways of West Asia. US President Donald Trump announces deal for complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. IMD forecasts extremely heavy rainfall in several parts of Gujarat during next 48 hours. Fishermen advise not to venture into sea till tomorrow. And weightlifter Lovpreet Singh wins silver medal at Commonwealth Games. Seema Kalirammana bags bronze medal in discus throw. And now the news in detail. Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." He said that the National Education Policy 2020 has been the biggest game changer over the last decade. Moving the bill in the House, Dr. Singh reiterated the Modi government's resolve of zero tolerance towards malpractices and paper leaks of public examinations.
3: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। सुबह के ठीक 8:40 आप सभी को नए दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। FM रेनबो पर मस्त मुंबई कार्यक्रम शुरू हुआ है। शुक्रवार का दिन है और इस महीने का आखिरी दिन भी है, तो ये दिन मनाने जो है रोशनी आ गई है और आज 11 बजे तक आपके साथ रहूंगी। शुक्रवार है तो बहुत कुछ खास होगा, बहुत कुछ मस्त होगा, काफ़ी फन और फिल्मी चीज़ें होने वाली है। उसके लिए बस आपको एक ही काम करना है, बने रहो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ जो है न्यूज़ ऑन एयर ऐप और आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।
2: चल शुरू हो जा।

0: बस बस बस बस सापे रुक गया, आगे बढ़। रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है
0: तो माँ, चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: आप सभी का फिर एक बार स्वागत आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो चैनल पर। सुबह सुबह आपको जैसे ही गुड मॉर्निंग कहा, हाय हेलो कहा, कई सारे लिसनर जो है दिन की शुभकामनाएं देने पहुंच गए हैं। पंकज महोद, अंजू जो है अंधेरी से मैसेज कर रही है, महेश भाटकर, विश्वास चांदोरकर, प्रमोद चिंचोलकर, ओंकार काटकर, फिरोज सिगनपुरिया, महेश बोहरा, विजेंद्र घटोल, ऐसे बहुत सारे लिसनर जो है मैसेज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और कुछ तो इतने प्यारे हैं कि सुबह का वक्त समझते ही डिजिटल माध्यम से ही सही लेकिन चाय जो है मुझ तक पहुंचा दी है, तो दिल से शुक्रिया। और देखो, हम आपकी और मेरी जो बातचीत है वो भी चलती रहेगी, प्यार मोहब्बत जो है वो भी हम बांटते रहेंगे। शुक्रवार है तो फिल्मों से जुड़ी बातें हम ज़रूर करेंगे, और आज 2000 की एक ऐसी फिल्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस फिल्म में बहुत ज़्यादा हेरा फेरी है, बहुत ज़्यादा हंगामा है और भरपूर गोलमाल है, लेकिन ये जो फिल्म है 70 के दशक की नहीं है, 2000 के दशक की है। कौन से फिल्म के बारे में बातें करेंगे, गानों की पार आपको पता चलेगा, तो बने रहो 107.1 पर।

बताओ, नाम बताओ, क्या किया है काम बताओ। बारिश में ये भीग रहा था बिन परमिट के

0: करे मरम्मत।
1: सड़क पे चलते चलते छिलके पे गिर पड़ा था और मुझसे दो कदम पर ये संतरी खड़ा था। किसने नहीं बचाया, मुझको नहीं उठाया, रस्सी से बांध करिए दरबार में ले आया।
0: उफ, वीरों की इस धरती पर अब ऐसे लोग भी रहते हैं। इस देश का फ्यूचर क्या होगा, हिस्ट्री में क्या कुछ कहते हैं। गिरे तो बस एक छिलके पर और छिलका भी एक केले का। इस देश में ऐसा वीर भी है, न दमड़ी का न ढेले का। किसी भी चिकनी फिसलन पर छह बार ले जाओ, गिराओ इसको। जिस केले पर ये फिसला है वो केला ढूंढ चिला।

0: चक्कर है सर, घन चक्कर।
1: घन चक्कर,
0: घन चक्कर, सुनासा सुनासा सुनाई देता है। ये शायर है सर, दुआ देता है या दुहाई देता है, सभी काम उल्टे हैं इसके हुजूर। रात को जागता है, सुबह सोता है, गम अगर इसका अपना हो तो हंसता है, दूसरे का मिले तो बहुत रोता है।
1: समझे।
0: यही है वो हजरत, बोलते कुछ नहीं, शोर करते हैं ये, सोचते हम हैं, वोर करते हैं ये।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ऍप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: आप सभी का फिर एक बार स्वागत. रोशनी आपके साथ बनी हुई है. कार्यक्रम चल रहा है मस्त मुंबई. 9:02 होने ही वाले हैं और मानो आपने अभी अभी FM रेनबो ट्यून इन किया है तो एकदम सही वक्त पर किया है, क्योंकि शुक्रवार के चलते आज सिनेमा का मैटिनी शो में किस फिल्म के बारे में बातें करने वाले हैं वो भी जान लेते हैं. अभी तक जितने सारे गेसेस मुझ तक पहुँचे हैं उसमें से एक भी फिल्म का नाम जो है वो सही नहीं है. लेकिन अब देखो कुछ और हिंट्स मैं दे देती हूँ. एक ऐसी 2000 की फिल्म है जिसमें दो अंजलि है. ये फिल्म कॉमेडी से भरपूर है और डायलॉग्स ऐसे कि बस उन डायलॉग्स को भी याद कर ले तो भी हम हंसना शुरू कर देते हैं और

मोबाइल ऐप यानी जानकारियों को आपके पास पहुंचाने का आधुनिक माध्यम ऐप रेडियो, जब ये दोनों एक होते हैं तो जाहिर है दुनिया और करीब आ जाती है। आकाशवाणी मुंबई की संवाददाता चैनल और अस्मिता चैनल वर्षों से अपने श्रोताओं के लिए मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, कोंकणी, गुजराती, उर्दू, सिंधी और कन्नड़ भाषा में कार्यक्रमों को प्रसारित करते आ रहे हैं। अब ऐप न्यूज ऑन एयर के डाउनलोड के जरिए आप संवाददाता अस्मिता, एफएम रेनबो और एफएम गोल्ड के जीवंत कार्यक्रमों को भी सुन सकते हैं। तो डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन एयर और जुड़िए, संवाद कीजिए आकाशवाणी मुंबई के चारों चैनलों से।

0: श्रेया घोषाल की आवाज, आक्रोश फिल्म का गाना, इरशाद कामिल के बोल, प्रीतम का संगीत, आए है क्या बात है। सुबह सुबह मस्मो में कार्यक्रम चल रहा है, सिनेमा का मैटिनी शो में आज जो जिस फिल्म का शो लगा है, अभी तक सही गेस सिर्फ पंकज महोद ही कर पाए हैं, क्योंकि आज हम जिस फिल्म के बारे में बातें कर रहे हैं, ये फिल्म जो है 2003 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म इंस्पिरेशन की इंस्पिरेशन है, यानी प्रियदर्शन की जो मलयालम फिल्म है उससे इंस्पायर होकर यह फिल्म हिंदी में बनी थी, और जो मलयालम फिल्म है वो भी चार्ल्स डिकेंस के नाटक द स्ट्रेंज जेंटलमैन से प्रेरित है। इस फिल्म के डायलॉग बहुत ही जबरदस्त है, तो नीरज वोरा, उनको तो बड़ा सा शॉर्ट आउट देना बनता है। हम बात कर रहे हैं हंगामा फिल्म की, जिसमें अक्षय खन्ना, आफ्ताब शिवदसानी, रिमी सेन, परेश रावल, ये सभी मुख्य भूमिकाओं में है। साथ ही जो कैरेक्टर एक्टर्स है उन्होंने भी जो कमाल किया है, तो उनके नाम लेना भी बनता है। शक्ति कपूर, राजपाल यादव, टीकू तलसानिया और शोमा आनंद, ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं। फिल्म की कहानी जो है उसके बारे में अगर बात करने जाए तो वाकई हंगामा हो जाएगा, इसलिए अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यही बर्लौट कराएंगे ओनली ऑन FM रेनबो।
1: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: दिल की बातें हो रही है और दिल जीत लिया है हंगामा फिल्म ने। हर बार देखते हैं, हर बार जो है दिल जीत लेते हैं। निर्देशक और लेखक प्रियदर्शन जो है उन्होंने पहले सोचा था कि जो अमिताभ बच्चन को राधे श्याम तिवारी का जो है किरदार, उनको सोचकर जो है वो किरदार लिखा गया था, लेकिन उस दौरान जो है अमिताभ बच्चन की तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद फिर जाकर ये जो कैरेक्टर है परेश रावल के हिस्से आया। लेकिन आज जब भी हम सोचते हैं, चाहे परेश रावल का किरदार हो या फिर और भी कोई लीड एक्टर्स का हो या फिर कैरेक्टर एक्टर का, हम ये फिल्म उन सभी के बिना जो है सोच ही नहीं सकते। इतना बखूबी हर एक किरदार ने अपना अपना काम निभाया है। और प्रियदर्शन जो है वो हमेशा कहते आए हैं अपने अलग अलग इंटरव्यूज़ में कि वो अमिताभ बच्चन के इतने बड़े फ़ैन हैं कि उन्होंने इसके पहले भी कई बार कोशिश की है। पहले हैवान फिल्म के दौरान भी उन्होंने चाहा था कि अमिताभ बच्चन वो उनके फिल्म में काम करे, लेकिन तभी ये मुमकिन नहीं हुआ था। यहाँ तक कि 90s के दौर में खुद अमिताभ बच्चन ने प्रियदर्शन को फिल्म ऑफर की थी, लेकिन तब उन्हें लगा कि वो तभी तैयार नहीं है कि इतने बड़े महानायक को वो डायरेक्ट कर पाए, इसलिए तब उन्होंने ही उस काम को मना किया था। लेकिन हम भी इंतज़ार करेंगे कि तब कब ऐसा होगा कि हम इन दोनों को फिर एक बार जो है साथ में देख पाए। लेकिन जिनके जिनके नाम लिए हैं उनसे जुड़ी बातें तो हो रही है और गाने भी उन्हीं के फिल्मों के हैं। अगला गाना जो है बागबान फिल्म में, और इस फिल्म में कई सारे जो है कॉमनालिटीज और स्टारकास्ट जो है वो हंगामा फिल्म से जो है मिलती जुलती है।
1: Groove.

हंगामा फिल्म में हमने कई बार देखा है कि अंजलि जो होती है यानी रिमी सेन का जो किरदार है वो कई बार राधे श्याम तिवारी के बंगले में अपने आप घुस जाती है और हम सोचते हैं ऐसे कैसे मुमकिन है, इतना बड़ा बंगला है, वहाँ पर वॉचमैन कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कैसे कोई अचानक से उस बंगले में जा सकता है। लेकिन हमें बस याद करना है वो पहला सीन जहाँ पर अंजलि और राधे तिवारी जो है एक दूसरे से मिलते हैं, काम से जुड़ी बातें करते हैं और तब मजाक मजाक में जो है राधे श्याम तिवारी जो है अंजलि को कहते हैं फिलहाल तो बस उनके बंगले में कोई सिक्योरिटी नहीं है, वही पोस्ट खाली है, तभी चाहो तो वो काम कर सकती हो, ऐसा कहा गया है। यानी इतनी बड़ी फिल्म

के बावजूद छोटी सी छोटी बात पर जो है बारीकियों पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इतने सहज और मस्ती मजाक में किया गया है कि शायद हर किसी का उस पर ध्यान दिया नहीं है। लेकिन वैसे ये जो अंजलि है काम के लिए शहर तो आई है, लेकिन राधे श्याम तिवारी के पास काम मांगने क्यों चली गई है? ऐसा क्या हुआ था कि बस उन्हीं के पास उन्हें काम के लिए जाने का जो है दिल किया?

0: फास्ट डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 14555 वर कॉल करा.
1: अब हंगामा फिल्म में जो रिमी सेन का किरदार होता है अंजलि का, वो राधेश्याम तिवारी के पास जो है पहले ही फिल्म के शुरुआत में ही जो है काम मांगने पहुंच जाती है. वो इसलिए होता है कि दोनों अंजलि यानी रिमी सेन का जो किरदार है वो और राधेश्याम तिवारी दोनों एक ही गांव के होते हैं. इत्तफाक की बात ऐसे कि उनकी सारी कंपनीज का नाम भी अंजलि होता है और उसकी जो सहेली होती है ये सुझाव देती है कि देखो इतने सारे कॉमन कनेक्शंस है, इतना एक इमोशनल एंगल भी है, तो क्यों ना वो चली जाए और खुद उनसे काम मांग ले, शायद उसका नसीब जो है खुल जाए और वाकई काम मिले. और ये सही बात है ना, अगर हमें काम की ज़रूरत है तो हमें ही लोगों तक पहुंचना है और काम को जो है बहुत अच्छे तरीके से मांगने में कोई भी शर्म की बात नहीं है. वैसे इस फिल्म से और क्या क्या सीखने को मिला है? बहुत कुछ सीखने को मिला है. हंगामा बहुत हो रहा है, बावजूद जिसको सीख लेनी है वो ऐसी फिल्मों से भी जो है सीख ले ही लेते हैं.

हंगामा फिल्म जिन्होंने भी देखी है सभी की फेवरेट फिल्म है। यहाँ तक कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो ज्यादातर फिल्में देखना पसंद नहीं करते, उन्होंने आज तक बहुत गिनी चुनी फिल्में देखी है, लेकिन उनकी भी जो है ये हंगामा फिल्म और उसके डायलॉग जो है काफ़ी पसंदीदा है। और ऐसा क्या है इस फिल्म में, क्योंकि अगर कहानी की बात करें तो खुद जो इस फिल्म के लीड एक्टर है आफ्ताब शिवदसानी, उनका भी कहना है कि आज तक अगर फिल्म की कहानी के बारे में उन्हें कोई पूछे तो वाकई फिल्म की कहानी क्या है ये बताना शायद मुश्किल हो सकता है। और जाहिर सी बात है क्योंकि किरदारों के बीच इतनी सारी गलत फहमियाँ हो रही है, सभी एक दूसरे में इतने उलझे हुए हैं कि कौन किसके साथ है, किसका क्या नाम है, कहानी क्या है, समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। लेकिन दोनों लीड एक्टर्स यानी अक्षय खन्ना और आफ्ताब शिवदसानी ने बार बार यही कहा है कि इस फिल्म की यूएसपी ये है कि इस फिल्म में सिचुएशनल कॉमेडी है और जो किरदारों के बीच इतनी सारी गलतफहमियां हो रही है, इतना सारा हंगामा हो रहा है, उसी वजह से जो है मज़ा जो है कई गुना बढ़ जाता है। और सही, अगर फिल्म के जितने सारे किरदार हैं उन किरदारों के अगर हम नाम भी जान ले, जैसे कि राधे है, जीतू, नंदू, अंजलि, इनके जो नाम है काफ़ी आम से है, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह रेगुलर से नाम है, इस वजह से भी शायद लोगों को ये बातें भा गई। फिल्म में जो लोकेशंस है, गाने के लोकेशंस है, वो भी बिल्कुल भी एग्जॉटिक लोकेशंस नहीं है, ये भी कुछ खास बात है। या फिर अलग अलग जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं उनके इतने अतरंगी और मज़ेदार अनोखे नाम हैं, जैसे कि रद्दी वाला, पोपट सेठ, कचरा सेठ, तो इतना इतना कुछ अलग अलग वैरायटी जो है बस एक ही फिल्म में मिल जाए तो फिर कैसे किसी को ये फिल्म और हर एक किरदार, हर एक सीन और हर एक डायलॉग पसंद ना आए।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: गाने चल रहे हैं, ब्रेक हो गया है और रोशनी आज आपसे सिनेमा का मैटिनी शो में बात कर रही है हंगामा फिल्म की। ये हंगामा फिल्म है, ये पहली फिल्म है जब अक्षय खन्ना प्रियदर्शन के साथ जो है एक कॉमेडी फिल्म कर रहे थे, लेकिन इसके पहले डोली सजा के रखना इस फिल्म में इन दोनों ने साथ काम किया था। तो एक दूसरे का जो काम करने का अंदाज है, ये दोनों बहुत अच्छे से रूबरू थे। डोली सजा के रखना फिल्म का भी हम क्यों ना गाना सुन ही ले। बाबुल सुप्रियो की आवाज़ है, श्रीनिवास का संगीत और महबूब के लिखे हुए बोल।

हंगामा फिल्म को हम एक कॉमेडी फिल्म समझ रहे हैं, वो ज़रूर एक बहुत ही बढ़िया कॉमिक फिल्म है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कुछ सीखने जैसा भी है। जैसे हमने बात की, अंजलि जो है बेबाकी से काम मांगने चली जाती है। इस तरह अगर काम की ज़रूरत है तो काम मांगने में कोई भी शर्म की बात नहीं है, ये बात हम सीख लेते हैं। नंदू जो होता है वो एक बड़े घर का बेटा होता है, बावजूद अपने म्यूज़िक के पैशन को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ छाड़ कर खुद एक अपनी स्ट्रगल है, अपनी जंग जो है वो लड़ रहा होता है। और जीतू जो होता है अपने पिता ने बताए हुए गए रास्ते पर सही से चलता है, सफाई से। उसे अपने बिजनेस के लिए 7.5 लाख चाहिए होते हैं और अपने पिता ने ही बातों बातों में जो कहा होता है हर एक शब्द का पालन करते हुए स्मार्टली उसने जो अपना मकसद है, अपना गोल जो अपने आप के लिए तय किया होता है वो पूरा कर ही देता है। यानी सारे लीड एक्टर्स है वो काम को लेकर काफी करियर फोकस्ड है, हम ये समझ सकते हैं। यानी 2003 की फिल्म है लेकिन 2026 में भी बड़ी आसानी से हम इससे रिलेट कर पा सकते हैं। और वही अंजलि तिवारी ने जो एक बात की थी, यानी उनका जो बर्थडे होता है, बर्थडे केक काट कर सबसे पहले वो केक अपने आप को खिलाती है, तो सेल्फ लव का ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और तब अंजलि तिवारी ने किया था और आजकल 2025-26 में हर एक को हम वो करते हुए देख रहे हैं। हर कोई आजकल अंजलि तिवारी बनने की अपने आप में कोशिश कर रहा है।

मस्तमय कार्यक्रम में आज रोशनी आपको सिनेमा का मैटिनी शो में दिखाया हंगामा फिल्म दिखाया नहीं है, रेडियो है, तो हमने उस फिल्म के बारे में कई सारी बातें की और हम सब जानते हैं हम इस फिल्म को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इतनी बढ़िया फिल्म है। लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग हैं जिनका ऐसा कहना है कि ये फिल्म जो है बुरे वक्त में उनके बहुत ज़्यादा काम आई है, क्योंकि जो फिल्म के निर्देशक प्रियदर्शन जो है उन्होंने ही एक किस्सा अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक दिन वो एयरपोर्ट चले गए थे और वहां पर एक लड़की उनसे टकराई। उन्होंने उस लड़की ने कहा कि क्यों ना आप मेरी दादी से आकर मिल लो, और जब वो उस लड़की से और उनकी दादी से मिले तब उन्हें पूरी कहानी जो है उनके परिवार की पता चली। उस लड़की जो माता पिता है कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए, दोनों माता पिता जाने की वजह से दादी जो है सदमे में चली गई और 5 साल तक वो डिप्रेशन में थी, और उसी दौरान जो है हंगामा फिल्म देखकर जो है उन्हें बहुत ज़्यादा सहारा मिला और वो डिप्रेशन से बाहर चली आई। और कई बार ऐसे होता है किसी भी कलाकार के लिए कि काम तो हम बहुत सारा कर लेते हैं, बड़ी बड़े ट्रॉफीज़ और पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन जब इस तरह के ऐसे लोगों की ज़िंदगी को छुआ है ये जब पता चलता है तो इससे बड़ा अवार्ड और कुछ हो ही नहीं सकता। तो हमें भी जो है हंगामा फिल्म कितनी खूबसूरत है, कितनी मज़ेदार है वो पता चली है, लेकिन इस फिल्म का प्रभाव कितना ज़्यादा है वो भी आज पता चल गया। अब देखो मस्त मुंबई में बातें तो और भी सारी करनी है इस फिल्म से जुड़ी, लेकिन वक्त बता रहा है अभी के लिए बातों को यहीं पर पूरा करते हैं, लेकिन एक गाने का वक्त अभी भी है। तो सुनते हैं आवाजें अभिजीत, अलका याग्निक और सोनू निगम की। रोशनी मिलेगी आपको ठीक 10 बजे समाचारों के साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सभी का स्वागत आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो चैनल पर। सुबह के ठीक 10 बज रहे हैं और नजर डालते हैं इस घंटे की सुर्खियों पे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। विधेयक में सख्त दंड और जुर्माना सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक निवारण विधेयक संसद से पारित होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा प्रणाली को और सशक्त बनाएगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। इसे ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। समाचारों के आगे, सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। ये तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। और समाचारों के अंत में, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में कल रात भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामन ने महिला डिस्क थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। 8वें दिन ऑस्ट्रेलिया 110 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बना रहा। वहीं भारत

थी और इस साल उनकी 46वीं पुण्यतिथि है। इसी के उपलक्ष में पहला गाना जो है उन्हीं की आवाज़ में सुनते हैं। ये सभी का जो है पसंदीदा गाना है, जो गायक भी है वो सभी के चहे थे हैं, तो उन्हीं की आवाज़ में गाने के साथ आज के कार्यक्रम का जो है आगाज़ करते हैं।

हूँ रोशनी और आप सुन रहे हो आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। अब देखो आजकल लाइट लेजर और म्यूजिक शो जो है एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है और इसे देखने के लिए हम देश के अलग अलग कोने में जा रहे हैं, यहाँ तक कि परदेश जाकर भी ये खास शोज देख रहे हैं। और यहाँ पर खास तौर पर ऐसे लाइट म्यूजिक और लेजर शोज बनाए जाते हैं, बहुत सारे म्यूजिकल ड्रामास का भी यहाँ पर आयोजन किया जाता है, तो ये अलग बात होती है। और मान लो कोई आपको कहे कि कुदरत ने भी एक लाइट और रिदम शो बनाया है और अगर वहाँ पर आपको जाने का मौका मिले तो आप जाना चाहोगे या नहीं? अगर जाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, हमारे महाराष्ट्र के अहमदनगर ज़िले में ही ऐसा जो है नेचुरल जो है लाइट एंड रिदम शो होता है और वो खास तौर पर ये जो फिलहाल मौसम चल रहा है उसी दौरान जो है वो एक खास अट्रैक्शन होता है। और वो जो गांव है कहाँ पर है हमें पता चला है, महाराष्ट्र में ही है, अहमदनगर ज़िले में ही है और वही गांव की सैर आज हम करेंगे गोरी तीरा

गाँव प्यारा, अरे है गोरी तेरा गाँव प्यारा। इस कड़ी में एफएम रेनबो पर अब जो है म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और कौन से गाँव हम जाने वाले हैं और यहाँ पर किस तरह का शो होगा, क्या क्या देखने मिलेगा, सब कुछ जानेंगे ओनली ऑन 107.1 एफएम रेनबो।

0: क्यों?
1: क्योंकि अब आप हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं।
0: कैसे?
1: प्ले स्टोर में जाकर प्रसार भारती का न्यूज ऑन एयर ऐप डाउनलोड कीजिए। एफएम रेनबो मुंबई को अपनी फेवरेट लिस्ट में ऐड करके आप हमसे जुड़ सकते हैं 24/7।
2: हाय, मैं हूँ सलीम मर्चेंट और आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो।
3: कुछ करिए नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए।
4: I am Madhuri Dixit and you're listening to me on FM Rainbow.
5: Hi, I'm Kabir Bedi and you're listening to FM Rainbow channel of All India Radio. We're an all-time
6: love. Namaste dosto, main hu Dino Moria aur aap sun rahe hain 107.1 Rainbow FM from All India Radio.

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

एफएम रेनबो पर अभी हमने सुना किसना फिल्म का गाना, इस्माइल दरबार का संगीत, उन्हीं की आवाज में ये गाना है और उन्हें साथ दे रहे हैं आयशा दरबार, शैलजा सलामत और खैर। एफएम रेनबो पर रोशनी के साथ अब हम यात्रा पर निकल गए हैं एक ऐसे गांव में, और मान लो ऐसे गाने सुनते हुए हम ड्राइव करते हुए इस गाँव पहुंच जाए। और ये गाँव कहाँ पर है तो देखा जाए तो मुंबई से बहुत दूर भी नहीं है और कहने के लिए नासिक के पास है, लेकिन तकनीकी रूप से देखें तो ये इगतपुरी और भंडारदारा जो है उससे निकट है। एक ऐसा गांव है जहां कुदरत की इतनी कृपा है इस पर कि पूछो ही मत। चारों तरफ वन है, पहाड़ है, मौसम बहुत ही कमाल होता है और हम शहर से जब यहाँ पर पहुँचते हैं तब इतना सुंदर लगता है क्योंकि भागती ज़िंदगी से थोड़ा सा आराम मिलने लगता है। हल्की हल्की हवाएं जो है वो उसका जो है अनुभव ले सकते हैं, और ख़ास तौर पर जब मॉनसून के वक्त में वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो हर तरफ बस हरियाली और हरियाली दिन के दौरान जो है नज़र आती है, क्योंकि हमने जैसे कहा कुदरती लाइट एंड रिदम शो जो होता है वो रात के वक्त होता है, लेकिन दिन में हर तरफ बस हरा भरा सा होता है।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: इसी के साथ आप सभी का फिर एक बार स्वागत, कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, रोशनी आपके साथ है। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा है, एक ऐसा गांव जिसे लोग जुगनों का गांव भी कहते हैं, हमारे महाराष्ट्र में ही है, पश्चिमी घाट क्षेत्र में ये गांव होता है और इसे पुरुषवाड़ी कहा जाता है। खास तौर पर जैसे ही गर्मियाँ का जो मौसम है वो ख़त्म होने की कगार पर होता है और बारिश शुरू होने के पहले यहाँ पर कई सारे लोग पहुँच जाते हैं, क्योंकि उस वक्त जो होता है जुगनुओं की संख्या इस गांव में और भी ज़्यादा जो है बढ़ जाती है। हज़ारों जुगनू यहाँ पर दिखाई देते हैं। दिन के वक्त हर तरफ हरियाली होती है, बहुत खूबसूरत मौसम होता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलने लगती है, रात जो है चढ़ने लगती है, तब यहाँ पर प्राकृतिक रोशनी का शो जो है वो दिखाई देता है और बहुत ही लयबद्ध तरीके से ये जुगनुओं का शो यहाँ पर चलता है और देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। क्योंकि बस सोचो ना, आंखें बंद कर लो और सोच लो, एक छोटा सा गांव है, बहुत ही जो है खूबसूरती से भरपूर है, बहुत चुनिंदा लोग हैं, हर तरफ हरियाली है, पेड़ है, पौधे हैं और उन पेड़ पर हज़ारों जुगनू हैं, उनकी रोशनी सिर्फ दिखाई दे रही है और एक काफ़ी रिदमिक तरीके से जो है वो रोशनी जगमगा रही है और वहाँ शांति है और सिर्फ हम। ओ माय गॉड, यानी बचपन में और हर वक्त जो कहानियों में जो सुनते आए हैं, जो सोचते आए हैं, वो वाकई यहाँ पर देखने मिलता है। शायद इसीलिए और ख़ास तौर पर पिछले कुछ सालों से पुरुषवाड़ी के यहाँ कई सारे लोग वहाँ पर कैंप्स का आयोजन कर रहे हैं, कुछ वहाँ पर दोस्तों के साथ, परिवार के साथ पहुँच जाते हैं। तारों के बीच जुगनुओं का मज़ा लेने का अगर मौका मिले तो कौन ये मौका गंवाना चाहेगा। देखो वक्त अभी भी है, अभी तक प्लान नहीं बना है और दोस्तों के साथ मॉनसून ट्रिप के लिए कहाँ पर जाए तो पुरुषवाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जो सुकून की तलाश में हैं वो पहुंच जाते हैं पुरुषवाड़ी, जिसे लोग जुगनों का गांव भी कहते हैं। इतनी खूबसूरती होती है यहाँ पर, ऐसे लगता है कुदरत ने पता नहीं उस पर क्या ही आशीर्वाद दे दिया है। हर तरफ बस खूबसूरती ही खूबसूरती। दिन में एक अलग रूप दिखाई देता है तो रात में पूरी तरह वो अलग होता है। और सुकून इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि देखो कुदरत का यहाँ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और यहाँ के जो खाना भी मिलता है वो बहुत साधारण होता है, यानी अगर कोई लग्जरी के हिसाब से जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये जगह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई बस भागती दौड़ती शहर की ज़िंदगी से थोड़ा पल जो है अलग से आराम से निकालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ज़रूर जा सकते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े होटल्स या लॉज जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। यहाँ के जो स्थानीय लोगों का घर जो है वही पर्यटकों के लिए बन जाता है होम स्टे, यानी उनके लिए घर और जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए होम स्टे। तो सब कुछ इतना खूबसूरत है, सीधा साधारण सा जो लोकल खाना है यहाँ के प्रदेश के हिसाब से, वही जो है पर्यटकों के लिए भी वही उपलब्ध है। और साथ ही खूबसूरती देखने के बाद कुछ तूफानी करने का दिल करे तो यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए काफ़ी आसपास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि हरिश्चंद्रगढ़ की यात्रा के लिए लोग चले जाते हैं, भंडारदारा के लिए भी जाते हैं और कलसुबाई ट्रैक ये भी कितना मशहूर है हम सभी जानते हैं। यानी अगर फ्लेवर्स अगर चाहते हैं हम ट्रैवल करते करते यात्रा करते करते तो इस गाँव में ज़रूर जो है आसानी से मिल जाएंगे। शायद इसी वजह से दिल कर रहा है कहने का, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, और वो प्यारा सा गांव है पुरुषवाड़ी।

आज के नमस्ते भारत कार्यक्रम में आखिरी गाना जो हम सुनने वाले हैं वो है नायक फिल्म से शंकर महादेवन और अलका याग्निक की आवाज़ है, एआर रहमान का संगीत है, तो ये कौन ही मिस करना चाहेगा। लेकिन रोशनी का अब वक्त आ गया है आपको आज के लिए टाटा गुड बाय कहने का। ये देखो 31 जुलाई है इस महीने का आखिरी दिन, और कहते कहते जो है आधा साल जो है 2026 बीत भी गया है, तो वक्त बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उस तेज़ी के साथ जो है हमें भी जो है आगे बढ़ते रहना है। लेकिन कुछ पल जो है सुकून के लिए और अपनों के लिए निकालना बहुत ज़रूरी होता है। शुक्रवार है और उसी के साथ जो है हम वीकेंड की तैयारी पर निकल पड़े हैं, तो वही सुकून के पल और वही पल जो है अपनों के साथ बांटना मत भूलना। रोशनी आपको बहुत जल्द मिलेगी अगले महीने, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो और हर दम सुनते रहो आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: स्वागत है आप सभी का, आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल है ये 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं। सुबह के 11 बज चुके हैं। पेश है अभी तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटारण के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। समाचार में आगे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल ड्रग फ्री मुंबई अभियान की शुरुआत की। उन्होंने ड्रग्स की समस्या के खिलाफ एकजुट होकर संकल्प लेने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ कानून व्यवस्था की समस्या को सुलझाने के लिए नहीं है, बल्कि देश के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों, शिक्षकों, उद्यमियों, महिलाओं और सामाजिक संगठन के सदस्यों और गणमान्य लोगों ने मुंबई को ड्रग फ्री शहर बनाने का संकल्प लिया। इराक ने उन दावों का खंडन किया है कि उसे हाल के अमरीकी सऊदी अरब हमले की जानकारी थी। इन हमलों में ईरान समर्थित पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज के 20 कर्मी मारे गए थे। इराकी सरकार के प्रवक्ता हैदर अल अबूदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि ये हमले इराकी सरकार के समन्वय से किए गए। इराक ने सऊदी अरब से उन आरोपों के सबूत भी मांगे हैं कि इराक स्थित ईरान समर्थितों गुटों ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले किए। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने भी हमलों के बाद सऊदी अरब की अपनी निर्धारित यात्रा स्थगित कर दी है। समाचार में आगे, खेल समाचार। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और सभी प्रारूपों में संन्यास लेने का यह सही समय है। रहाणे 2003 में अंतिम बार वेस्टइंडीज दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम में शामिल हुए थे। वनडे अंतर्राष्ट्रीय में उनका आखिरी मैच 2018 में इंग्लैंड के खिलाफ था। 38 वर्षीय रहाणे ने 2013 से शुरू किए अपने करियर में कुल 85 टेस्ट, 90 एकदिवसीय और 20 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। वक्त हो रहा है 11:03 और ये समय होता है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम ब्रेक फ्री का, तो बने रहिए हमारे साथ। पहली पेशकश आप तक पहुंचा रहा हूं उदित नारायण और रकाया याग्निक की आवाज़ फिल्म तेरे नाम से।

ओढ़नी ओढ़ के नाचू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आकाशवाणी मुंबई केंद्र के एफएम रेनबो चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। सुबह के 11:10 हो रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है ब्रेक फ्री, और ब्रेक फ्री में आज हम आपको एक से एक बेहतरीन गीत सुनाने वाले हैं। दरअसल अभी जो बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, और बारिश के मौसम में हम सभी म्यूज़िक प्रेमियों का और साथ में जो भी म्यूज़िक प्रेमी होते हैं वो तो थिरकना भी जानते ही हैं। तो इस बारिश के मौसम में सिर्फ यही ख्वाहिश रहती है कि काश हमारे पैरों में भी मोर के पंख लग जाएं और इसी बारिश में हम भी नाचने लगे, जो सेम फीलिंग सेम वाइब, ओढ़नी ओढ़ के नाचूं। जी हाँ, नाचने से इसलिए जिक्र है नाचना, क्योंकि नाचते जब हम हैं तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को ये मैसेज जाता है कि समथिंग इज़ गुड। और यकीन मानिए, जब हमारा मन और मस्तिष्क दोनों ये मानना शुरू करता है कि समथिंग बहुत अच्छा है, जो कुछ ऑल इज़ वेल, कुछ अच्छा चल रहा है, तो फिर यकीन मानिए हमारे मनोभाव भी ऐसे ही हो जाते हैं। और ब्रेक फ्री कार्यक्रम के इस ब्रेक फ्री म्यूजिक के साथ हम आप भी नाचिए और बने रहिए एफएम रेनबो के साथ। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। अगली पेशकश फिल्म तेरे नाम से ही एक लगाना है, बड़ा ही मनभावन ट्रैक है, बने रहिए एफएम रेनबो के साथ।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ

जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। कार्यक्रम ब्रेक फ्री चल रहा है और ब्रेक फ्री में हम बात कर रहे हैं बारिश और मानसून के ऊपर। कहीं

कहीं हमारे ज़िंदगी को कुछ अच्छे और या अच्छे या कहिए थोड़ा सा बैड दोनों ही पहलुओं में प्रभावित तो ज़रूर करते हैं। जब मानसून आता है तो मुंबई तो बदल ही जाती है, सड़कें चमचमाने लगती हैं, छतरियों के दुकान लग जाते हैं और हर आदमी के चेहरे पर दो ही भाव होती है, एक तो ट्रैफिक का टेंशन, दूसरा पहली बारिश की जो खुशी होती है वो भी। लेकिन धीरे धीरे जब समय बढ़ता चला जाता है, मानसून अपने शबाब पर होती है, तो फिर वही जो पानी की समस्याएं और तरह की जो चीज़ें हो जाती हैं उससे कहीं ना कहीं हमें दो चार होना पड़ता है। लेकिन यह हम सभी मुंबईकर की जिम्मेदारी भी है कि अगर थोड़ी सी परेशानी भी हो तो हम धैर्य बनाकर अपने इमोशंस को FM रेनबो पर जो चल रहे हैं गानों के जरिए उसको समय को काटते रहें, गुजारते रहें और मज़ा लेते रहें। ब्रेक फ्री कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त RJ रविशंकर। अगली पेशकश आप तक श्रेया घोषाल की आवाज़, बने रहिए FM रेनबो के साथ।

0: रिस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: ईकेवाईसी
1: एनईएफटी आरटीजीएस
0: आईएमपीएस
1: कॉस्मोस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रवि शंकर। कार्यक्रम ब्रेक फ्री चल रहा है और ब्रेक फ्री में आज हम बात कर रहे हैं मुंबई के बारिश और वो किस तरह से हमारे जनजीवन को प्रभावित करती है और किस तरह का हमें कहे या कहिए तो अनुभव देती है। मुंबई की बारिश की सबसे अच्छी बात क्या है? इसकी आवाज़, छत पर टप टप की आवाज़, बालकनी से सरसर की आवाज़, लोकल की खिड़की से बूंदे जब अंदर आती है तो ये शोर नहीं, ये लोरी हैं। ये कहती हैं कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ और थम जाओ, इस मौसम का भी थोड़ा मज़ा लो। और खुशबू, पहली जब बूंदे बारिश की मिट्टी पर गिरती है तो एक सौंधी सी खुशबू महकती है और पूरा शहर में एक अजब सी महक फैल जाती है। बारिश सबको बराबर कर देती है, चाहे एक 15 का बिजनेसमैन हो या फिर किसी दादर फुटब्रिज पर, फुटपाथ पर वेंडर, सबके लिए एक सा मौसम हो जाता है, एक सी चाहतें हो जाती हैं। कभी कभी तो जी करता है कि इस बारिश में रुककर थोड़ा सा मज़ा ले लिया जाए। साथ में इस मौसम में खाने के भी अजीब से एक चुल रहती है कि हम गरम गरम पकौड़े खाएं और उसमें साथ में चाय का टेस्ट, कटिंग, मुंबई की कटिंग, ये सब चीज़ें मिलकर एक अजीब तरह का एक कॉम्बिनेशन देता है जो हमें सुकून देता है और मज़ा भी आता है। अगली पेशकश फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से ये गाना आप तक पहुँचा रहा हूँ। ब्रेक फ्री कार्यक्रम चल रहा है, बने रहे एफएम रेनबो के साथ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। कार्यक्रम ब्रेक फ्री चल रहा है और मात्र एक गाने की गुंजाइश रह गई है, तो बस वो अगला गाना हम प्ले करने जा रहे हैं, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़। इस गाने के बाद हम मिलेंगे आपके साथ ठीक 12 बजे न्यूज़ हेडलाइंस को लेकर के। उसके बाद कार्यक्रम म्यूजिक कैफे होगा, तो बहरहाल बने रहिए आप एफएम रेनबो के साथ। छोड़े जा रहा हूँ फिलहाल इस नगमे के साथ, बने रहिए।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: यहाँ स्वागत है आप सभी का 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM रेनबो पर। दोपहर के 12 बज चुके हैं और ये समय होता है मुख्य समाचार का। तो पेश है 12 बजे तक के मुख्य समाचार। अलग अलग मुद्दों पर संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। राज्यसभा में कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई, वहीं लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक रोक दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का दौरा करेंगे। इस दौरान वे एक नवनिर्मित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे और 17,900 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। समाचार में आगे, भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढहने से कम 9 लोगों की मौत हो गई तथा 4 से 5 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। अधिकारियों ने बताया कि बालाजी नगर क्षेत्र स्थित कोहिनूर बिल्डिंग का एक हिस्सा कल रात करीब 11:30 बजे ढह गया। समाचार में आगे, खेल। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता, जबकि सीमा कली रामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। 8वें दिन ऑस्ट्रेलिया 110 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बना रहा, वहीं भारत 17 पदकों के साथ 10वें स्थान पर रहा। भारत के पदकों में 3 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार। पेश है अगला कार्यक्रम म्यूजिक कैफे।

जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ज आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। कार्यक्रम म्यूजिक कैफे चल रहा है और म्यूजिक कैफे में हम ज्यादातर गाने चलाते हैं 1990 से 2000 तक के बीच के। अगर आप भी इस 90s नॉट आउट, जो कि अभी भी नॉट आउट है हमारे प्लेलिस्ट से, अगर आप सुनना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं पसंद, तो हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ज़रूर हम कोशिश करेंगे आपकी फरमाइश को शामिल करने की। अगली पेशकश अलका याग्निक की आवाज़, फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

जी हाँ, ताल से ताल मिला। एफएम रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। कार्यक्रम म्यूजिक कैफे चल रहा है और इस म्यूजिक कैफे में मात्र एक गाने की और यहाँ पर गुंजाइश बच रही है, क्योंकि 12:30 पर हम आपको सुनाएंगे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम उमंग। तब तक एक गाने की यहाँ गुंजाइश बच रही है, जिसको मैंने लिया है फिल्म राज से। अलका याग्निक की आवाज़ है, आपके प्यार में हम सवरने लगे। और वैसे भी प्यार में तो हम अक्सर सवर ही जाते हैं, क्योंकि प्यार हमें कहीं ना कहीं परवान चढ़ाकर हमारी खुद की जो पर्सनैलिटी है, खुद का जो व्यक्तित्व है, कहीं ना कहीं वो एक चमकाऊ व्यक्तित्व कर देता है। प्यार से ही तो जहान है, प्यार से ही तो सारी बातें हैं। जिस लिसनर्स की हम यहाँ पर अभी फरमाइश नहीं दे पाए, उनको हम ज़रूर कह रहे हैं कि हिट एंड हॉट में हम उनकी फरमाइश ज़रूर पूरी करेंगे। 1:05 पे जो हमारा कार्यक्रम होगा वहाँ पर, उस बीच में हम हिट एंड हॉट में आपकी फरमाइश को ज़रूर पूरी करेंगे। तब तक बने रहिए FM रेनबो के साथ। अगली पेशकश पहुँचा रहा हूँ ये गाना आप तक।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
1: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभ्यारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए, इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा पुष्कर, लेहान जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
1: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
1: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
1: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
1: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
1: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी,
1: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
1: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी,
1: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी,
1: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: जी हाँ श्रोताओं, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है। केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से भी गहरा ज्ञान मिलता है। और छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओं, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
1: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है।
1: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: यूट्यूब में जाइए, टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहां डाउनलोड कर सकते हैं।
2: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800440559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
2: आप हमें इंस्टा, फेसबुक,

0: फेसबुक एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको सीआईटी एनसीईआरटी के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
0: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
5: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग।
2: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेल बागकर, मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
3: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।
2: धीरे धीरे उन्हें ये समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
3: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
2: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से

0: संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
2: प्रणाम गुरुदेव।
3: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
2: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
3: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
2: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
3: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
2: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
0: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
1: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनके रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं।

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, मिनट कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान, मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी,
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
3: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशित

0: को के पास जाते।
1: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
2: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
3: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
3: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
1: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
4: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शततल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
0: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकटमुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
4: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
0: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
6: लयात्मक प्रस्तुति।
5: शीर्षक है
6: अभी न होगा मेरा अंत।
5: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

जी हाँ, तुम्हें दिल से चाहा था हमने मगर तुम हुए ना हमारे। फिल्म मीरा का मोहन से ये गीत हमने आपको सुनवाया। हमारे साथ जो लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ उनकी फरमाइशें भी आ रही हैं हम तक, तो सभी की फरमाइशें शामिल ना कर पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सबका नाम ले देते हैं। मुकेश कश्यप जी हमें मैसेज कर रहे हैं, विजेंद्र खटोल जी अकोला से हैं, अजय सखाड़े इंदौर से, गुरमीत सिंह मीता सिंह जी ने भी अपनी फरमाइशें भेजी हैं, साथ में लालगिरी गोस्वामी जी भी लगातार बने हुए हैं, और पंकज मोहड़ दी गाने की फरमाइश कर रहे हैं कि गाना सुना दीजिए, क्या हुआ तेरा वादा, फिल्म हम किसी से कम नहीं। तो हम बिल्कुल यहाँ पर कहना चाहेंगे कि पंकज मोहड़ जी और विजेंद्र घटोल जी और मुकेश कश्यप जी, सभी की फरमाइशें कहीं ना कहीं हमारे प्लेलिस्ट में शामिल हैं, तो बने रहिए आप हिट एंड हॉट के साथ। अगली पेशकश आप तक पहुंचा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, फिल्म अमर अकबर एंथनी से ये बेहतरीन गीत सुनिए, कव्वाली।

चाहो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का मुंबई केंद्र सुन रहे हैं। ये FM रेनबो चैनल है। कार्यक्रम चल रहा है हीट एंड हॉट। 1:40 हो रहे हैं दोपहर के 1:40। हीट एंड हॉट का वक्त होता है और अभी अपनी पेशकश हम मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। चूंकि आज 31 जुलाई है और आज ही के दिन मोहम्मद रफ़ी साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, तो इस दिन को हम पुण्यतिथि के तौर पर मनाते हैं। और हम चूँकि जब तक ये सूरज चाँद रहेगा, रफ़ी साहब की गायकी आवाज़ तो हम संगीत प्रेमियों और सिने प्रेमियों के बीच तो गूंजती रहेगी। रफ़ी साहब में खासियत थी कि वो प्लेबैक सिंगिंग के उस्ताद थे। उन्होंने अपने आप को इस तरह से, अपनी आवाज़ को इस तरह से ढाला कि पर्दे पर जिस अभिनेता के लिए वो गायन करते, दर्शकों को लगता कि ये तो उसी अभिनेता की आवाज़ है। खास तौर पर शम्मी कपूर साहब पर जो उनकी आवाज़ छाती थी, लोगों को मज़ा आ जाता था। अगली पेशकश हम यहाँ पर पहुँचा रहे हैं, सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़।

जी हाँ, 107.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का एफएम रेनबो चैनल सुन रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। हिट एंड हॉट चल रहा है और 1:47 हो गए हैं। कुछ एक गाने की गुंजाइश यहाँ पर रह गई है, तो चूंकि हम यहाँ पर अपने श्रोताओं का नाम लेना भी ज़रूरी समझते हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश हम तक भेजी है, तो सबसे पहले मीना जी लिख रही हैं कि चूंकि आज रफ़ी साहब का पुण्यतिथि है तो क्या मेन की ही रिक्वेस्ट पूरी होंगी। जी नहीं, बिल्कुल आपकी भी रिक्वेस्ट यहाँ पर ली जा रही है। राकेश माथुर जी नमस्कार कह रहे हैं, शुभलक्ष्मी मस्ताकर जी हैं और विजेंद्र घटोल अकोला जी से, विजेंद्र घटोल जी जो हैं जिन्होंने फिर से फरमाइश भेजी है, उनकी तो फरमाइश हमने एक बार शामिल की ही। के डी मल्होत्रा जी हैं, ये कह रहे हैं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। बिल्कुल जितनी भी गाने की गुंजाइश बन पाएगी हम ज़रूर प्ले करेंगे। दोपहर के 1:48 कार्यक्रम हिट एंड हॉट चल रहा है, मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। कुछ कहना चाहते हैं हमारे कार्यक्रम के बारे में, फीडबैक देना चाहते हैं 8657-6610711 इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगली पेशकश पहुँच रही है फिल्म हीर रांझा से लता मंगेशकर की आवाज़ आप तक।

जी हाँ, कार्यक्रम हिट एंड हॉट सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त आरजे रविशंकर। तुम्हीं से दिल का राज बताएं, तुम्हीं से राज छुपाएं, हमें क्या हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ है, बस आखिरी गाने की गुंजाइश रह गई है इस कार्यक्रम में। अगली पेशकश मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ पहुंच रही है। चूंकि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि थी तो आज का कार्यक्रम हमने उन्हीं को समर्पित किया। मुझे दीजिए इजाज़त, आखिरी गाने के सहारे होगी मुलाकात किसी न किसी मोड़ पर ज़रूर। बने रहिए FM रेनबो के साथ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ छोड़े जा रहा हूँ कार्यक्रम हिट एंड हॉट की आखिरी पेशकश आप तक।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना

0: आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूँ कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे NewsOn AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने की बात की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइंस पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छू रहा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल SDF ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लालछनजोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरला, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।
1: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटून और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वही मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गाँव को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मया मंदी कहू हर बरा उसवरती डुलतोय तोरा गोपन फिर उगर करा अशराखण कर की जरा सुखी सरल्यावर घसरल्यावरती सफर ठरविना सुखी सरल्यावर हसर

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं लव योर जिंदगी एफएम रेनबो 107.1 पर। दोस्तों कहते हैं कुछ दौर कभी भुलाए नहीं जाते क्योंकि वे सिर्फ इतिहास में नहीं हमारे यादों में बस जाते हैं।

कोई सफर या कोई अधूरी कहानी जुड़ी होती थी। 90 के दशक का संगीत सादगी, मधुरता और सच्ची भावनाओं का संगीत था। यही वजह है कि आज भी जब उन गीतों की पहली धुन कानों में पड़ती है तो दिल मुस्कुराता है। तो आइए आज लव यू जिंदगी में हम निकलते हैं उसी सुनहरे दौर की एक खूबसूरत संगीत यात्रा पर, जहां हर गीत आपको आपकी किसी प्यारी याद से मिलवाएगा। और इस सफर की शुरुआत करते हैं उन गीतों से जिसने ना जाने कितने दिलों को पहली मोहब्बत का एहसास कराया।

दोस्तों सच कहें तो 90 के दशक के गीतों की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि इनमें शोर नहीं सुकून था। शब्द कम थे लेकिन एहसास बेहद गहरे थे। उस दौर में मोहब्बत का इजहार भी गीतों के सहारे होता था। शायद इसलिए ये गीत आज भी हर पीढ़ी के दिल को छू जाते हैं। तो चलिए कारवां आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूब

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन। और मैं देख रहा हूं बहुत से लोग जुड़े हैं हमारे साथ, चलिए उनका कुछ नाम लेते हैं। अजय साखरे जी इंदौर से हैं, उनको काफ़ी अच्छा लगा गाना और वो गुड इवनिंग बोल रहे हैं, तो आपको भी गुड इवनिंग। पंकज मोहर जी हैं, प्रणव शिंदे, दीपाली शिरोडकर जी गुड इवनिंग बोल रही हैं, और विजेंद्र खटोल जी हैं, वो भी गुड इवनिंग बोल रहे हैं, उनको भी गाना अच्छा लगा। और राजेंद्र परमार, प्रमोद चिंचोलकर जी हैं, अंजू जी हैं, फिरोज़ सिगनपुरिया और बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, रजनीकांत पाटिल। तो चलिए अब कारवां को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों 90 के दशक की एक और खूबसूरत बात थी उसकी आवाज़ें। कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, इनकी आवाज़ों ने ना जाने कितने यादों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो चलिए सुनते हैं इनकी आवाज़ों में कुछ बेहतरीन नगमे।

दोस्तों, मेरा नाम है आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी। दोस्तों, 90 के दशक में रोमांटिक गीतों के साथ कुछ मस्ती भरे गाने भी आए थे। जरा याद कीजिए, अखियों से गोली मारे, तिरछी टोपी वाले, टन टना टन टन टन टारा, ये सिर्फ गाने नहीं थे, हर शादी, हर फंक्शन और हर मोहल्ले की पार्टी की जान थे। आज भी कहीं ये धुन सुनाई दे जाए तो चेहरा मुस्कुराता है ना। तो चलिए सुनते हैं कुछ ऐसे ही मस्ती भरे गाने।

तो दोस्तों 90s के गीतों के साथ आज का हमारे खूबसूरत सफर यहीं तक। उम्मीद है इन गीतों ने आपके यादों के पन्ने फिर से खोल दिए होंगे और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ला दी होगी। मैं हूं आपका दोस्त आरजे रॉबिन, आप सुन रहे थे लव इज जिंदगी। समाचार के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी हमारे अगले कार्यक्रम अंदाज़े बयान। सुनते रहिए FM रेनबो 107.1, म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: दोस्तों आदाब अर्ज़ है। हर लव्स की अपनी एक रूह होती है। कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ महसूस करते हैं, और कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो बिना कुछ कहे दिल की पूरी दास्तान सुनाते हैं। इन्हीं जज्बात, इन्हीं ख्यालात और दिल नशी नगमों के साथ महफिल सज चुकी है। आपका तहे दिल से इस्तकबाल है अंदाज़े बयां में। मैं हूं आपका मेज़बान आरजे रॉबिन, और हम चलेंगे अल्फाज, एहसास और संगीत के उस सफ़र पर जहां हर गीत किसी याद का आईना है, हर धुन किसी ख्वाब की तर्जुमान। तो आइए दिल के महफिल में शामिल हो जाइए, खामोशियों को भी बोलने दीजिए, और शुरू करते हैं अंदाज़े बयां।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत अंदाजे 60 कोटी लोक 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी पात्र ठरले आहेत. आतापर्यंत 12 कोटींहून अधिक मोफत उपचार देण्यात आले आहेत, ज्यामुळे गरीब कुटुंबांच्या वैद्यकीय खर्चात अंदाजे 2 लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. आजच आयुष्मान ॲप डाउनलोड करा आणि आयुष्मान कार्ड बनवा. अधिक माहितीसाठी 1455 वर कॉल करा.
1: दोस्तों, कहते हैं खूबसूरती सिर्फ चेहरे की मोहताज नहीं होती. कभी किसी की सादगी दिल जीत लेती है तो कभी उसकी मासूमियत उम्र भर साथ रहती है. इश्क भी शायद ऐसे ही शुरू होता है, जहां किसी की चमक बनावटी नहीं बल्कि उसके होने में ही बसती है. चलिए अब सुनते हैं एक ऐसा ही खूबसूरत नगमा जिसमें मोहब्बत की तारीफ किसी जेवर से नहीं बल्कि एक सच्चे एहसास से की गई है.

0: बाकी सब गंगा।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 107.1 और प्रोग्राम चल रहा है अंदाज़े बयां। हर मुलाकात की अपनी एक उम्र होती है, लेकिन कुछ साथ ऐसे होते हैं जिनसे बिछड़ने का दिल कभी नहीं करता। जब शाम खूबसूरत हो, बातें अधूरी हो और दिल अभी भी कुछ कहना चाहता हो, तब बस एक ही तमन्ना दिल में जागती है, आज जाने की जिद ना करो।

दोस्तों, इसी गीत के साथ अंदाज़े बयां को समाप्त करने का वक्त आ गया है और हम आपसे दोबारा मिलेंगे समाचार के बाद आपके चहेते कार्यक्रम जिसका नाम है हम तुम। और आज की हमारी थीम है आपको ऐसे गाने हमें भेजने फरमाइशों में जिसमें बारिश, सावन या वर्षा का जिक्र हो। आपको ऐसे गाने भेजने हैं जिसमें बारिश, बरसात या सावन का जिक्र हो। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, तो फटाफट सोचिए और भेजिए और हम उन्हें प्ले करेंगे। मिलते हैं समाचार के बाद।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: तो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके चहेते कार्यक्रम जिसका नाम है हम तुम। मैं हूं आरजे रॉबिन और आप सुन रहे हैं FM रेनबो 107.1। तो आज की जो हमारी थीम थी वो थी सावन पे और बारिश और बरसात, ऐसे गाने का जिक्र जिस गाने में है उसकी आपकी फरमाइशें भेजनी है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी फरमाइशें भेजी हैं और हम ट्राई करेंगे कि सबके गाने प्ले करें जितने हमसे हो सके। तो चलिए पहले गाना चलाते हैं। ये इसकी रिक्वेस्ट की है मोहित जी ने, जो कि है अंधेरी से।

तो दोस्तों, इस गाने की फरमाइश की थी प्रणव शिंदे जी ने, और अब जो गाना, जो दो गाने बैक टू बैक प्ले करने वाले हैं, इसकी फरमाइश बहुत लोगों ने की है। पहला गाना है रिम झिम गिरे सावन फिल्म मंजिल से, और इसकी फरमाइश की है फिरोज सिगनपुरिया, शैलेश विक्रम चेतन, और दूसरा गाना टिप टिप बरसा पानी, इसकी फरमाइश की है संजय दर्शन, प्रमोद चिंचोलकर अकोला से, अजय साखरे इंदौर से, और सूरज दाईवाला पुणे से। तो दोनों गाने बैक टू बैक।

इस गाने की फरमाइश की थी राकेश माथुर, पंकज महोड़, सुशील यादव, रेणु यादव जी ने। और अब जो अगला गाना आ रहा है वो है, उसकी फरमाइश की है हितेंद्र दास फ्रॉम असम और विजेंद्र घटोल, और गाना है अब के सजन सावन में।

और दोस्तों, अगला गाना जो हम प्ले करने वाले हैं, इसकी रिक्वेस्ट की है प्रनीत और निशा ने, जो है नागपुर से, और गाने का नाम है सावन बेरी। और एक और ने इसकी रिक्वेस्ट की है, इनका नाम है चेतन कुमार। तो चलिए सुनते हैं गाना।

दोस्तों, अगले गाने की फरमाइश की है दीपा पालकर, मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, और गाने के बोल हैं छम छम। चलिए सुनते हैं गाना।

और दोस्तों इस गाने के साथ मेरा जाने का समय हो रहा है। मैं हूं आरजे रॉबिन और आप सुन रहे थे हम तुम। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एंड फ्रॉम हियर द रिदम ओनली गेट्स लाउडर। आरजे रीटा इज अप नेक्स्ट विथ रॉक विद चॉक। टेक केयर एंड बाय बाय।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांति

0: शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा। स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरालंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को

0: संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने VBG रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी 5 आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और 4 अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए STF की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सल्लाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का

0: नहीं छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
2: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत, बनासकांठा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी, तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस, सेंटर अप्रूव्स प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना फॉर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट्स विद एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, ऑल्सो क्लियर्स नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम समुद्र मंथन टू स्ट्रेंथन कंट्रीज एनर्जी सिक्योरिटी एंड अनलॉक वास्ट ऑफशोर पोटेंशियल। यूनियन कैबिनेट गिव्स नॉट टू कंटिन्यूएशन ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। Former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others get life term for murder of IB officer Ankit Sharma during 2020 Delhi riots. New Delhi slams Islamabad over brutal crackdown against peaceful protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Flood crisis deepens in Odisha, relief and rescue operations in full swing. And Asmita Day clinches India's first ever judo gold at Commonwealth Games. Indian boxers Preeti Pawar, Jasmine Lamboria, Arundhati Chaudhary and Ankush Pangal advance to final in their respective bouts. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। रात के 11:32 हुए हैं। लीजिए आप सुनिए अभी तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टेक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। राहत बचाव कार्यों में तेजी। आकाशवाणी आइजोल ने अपनी हीरक जयंती मनाई। राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री बी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। ये थे आकाशवाणी पर अभी तक के मुख्य समाचार। लीजिए आप सुनिए आकाशवाणी रेनबो का अगला कार्यक्रम।

0: आकाशवाणी
1: तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बिल्कुल इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए जैसे हम आपसे मिलने के लिए आए हैं यहाँ, उसी अंदाज के साथ, उसी गहरी मोहब्बत के साथ और उसी पुरानी शिद्दत के साथ कि आपको आकर कहें कि आपके साथ ये मुलाकात बहुत खास है, क्योंकि ये है आकाशवाणी रेनबो की रंग महफिल। जी हाँ, रात के 11:09 हो चुके हैं, 30 सेकंड भी उसमें जुड़ चुके हैं और इस वक्त मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ इस महफिल में। मेरा नाम विकास है और मेरा ये भरोसा है आपको कि आपके साथ की ये मुलाकात, ये रंग महफिल जहाँ तमाम गज़लों के अलग अलग रंग, अलग अलग माहौल में कहे जाने वाली कुछ खास बातें हैं हम आपके साथ करेंगे। बस आप रहिएगा हमारे साथ बरकरार। चंदन दास ने अपनी बात आपको कही, लेकिन उसके बाद अब गोविंदर जी की बारी है। बड़ी खूबसूरत गजल ढूंढ कर लाया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है? और आपको बस ये भी कहना चाहता हूँ कि नजरें उठा के शायद तुम्हें ना देख सकूँ, तुम्हें मैं देख रहा हूँ नजरें उठाए बगैर। गोविंदर जी आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं, सुनिए।

क्या खूब है ये गजल। मजार साहब लिखते हैं कि दफन कर दो हमें कि सांस आए, नब्ज कुछ देर थमी सी है, कौन पथरा गया है आंखों में, बर्फ पलकों पे क्यों जमी सी है। और कमाल की बात यह है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। लेकिन यह वक्त है कि इस वक्त को हम निकलने से पहले अपने हाथ से, अपने जैसे मुट्ठी से रेत निकल जाती है ना, वक्त भी ऐसे निकल जाता है। इसलिए जो लम्हे हमें मिलते हैं उन लम्हों को जाने से पहले जी लेना चाहिए, है ना। अक्सर हम देखते हैं कि इंसान जीने की नहीं बल्कि जीने की तैयारियों में लगा रहता है। कल को कुछ ऐसा होगा तो हम वैसा करेंगे, ऐसा सोचेंगे, वैसा कुछ कर देंगे, बस तैयारियां तैयारियां तैयारियां। लेकिन जो वक्त हाथ में है, कभी जीने की कोशिश की है? सोचिएगा जरूर, क्योंकि जितनी सांसें हमें मिल रही हैं, हो सकता है कि दुनिया में तमाम ऐसे लोग हों जो इनसे भी महरूम हों। इसलिए जो ईश्वर ने दिया है, ऊपर वाले की जो रहमत है, उसके शुक्रगुजार बनिए, ना कि रो रो कर घर भर दीजिए, है ना। मिताली जी भी कुछ कह रही हैं, सुनिए, बहुत प्यारी बात है सिर्फ आपके लिए, यही रंगे महफिल में। स्टे ट्यून्ड।

0: की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: 102.6
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: AIR FM Rainbow 102.6

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: और मैं कहता हूँ कि ये फसाना सिर्फ निगाहों से नहीं, अल्फाजों से भी बयां होता है, और उन्हीं बड़ी नफासत से कहे गए अल्फाजों का नाम है गज़ल। और उस गज़ल को अगर गज़ल की शक्ल में ना भी देखें तब भी बड़ी नफासत के साथ कई बार ऐसी बातें कह दी जाती हैं जो दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुँचती हैं, और उन्हीं बातों में से एक ये गाना इजाज़त का गाना। इस फिल्म का बस नाम भर ले ना जब हो जाता है तो फिर समझिए कि पूरी ऐसी प्लेस सामने खुलती है ना, इसमें एक एक जो नगीना है बेमिसाल है। और आज मेरा वो फेवरेट जो जब भी मुझे मौका मिलता है ना तो मैं ज़रूर आपके लिए बजाता हूँ, है ना। आशा जी आरडी मतलब पंचम दा का जो कॉम्बिनेशन है और साथ में गुलजार, जबरदस्त रंगी महफिल में ये बड़ा खुशनुमा सा रंग जिसमें गम तो है लेकिन उसका अपना मजा है। आपके लिए मेरा कुछ सामान

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

भैया क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का। हाँ तो भाई मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम। क्यों ये कहता है दिल? इस मुलाकात में आपके साथ रहेंगे संतोष राव, माला नेगी, राजेश कुमार, प्रवीण कुमार, वीर दमन और ओपी राठौर भी। 31 दिसंबर की रात उमंग 2026।

गजल कह रही है याद नहीं याद नहीं याद नहीं, लेकिन हम आपको कहेंगे कि चाहे कुछ भी भूल जाएं पर ये याद रखें कि ये आकाशवाणी का रेनबो है जहां इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंगे महफिल। अब वक्त कह रहा है कि आपसे फिदा ली जाए, आपसे अगली मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया जाए। वक्त जब पता लगेगा हमें आपसे मुलाकात का तो ज़रूर आप तक खबर पहुंच जाएगी। एक दिल से दिल तक का रिश्ता है हमारा, लेकिन बस इतना ज़रूर याद रखिएगा कि अपने अपने हौसले अपनी अपनी तलब की बात है, अपने अपने हौसले अपनी अपनी तलब की बात है। हमने तुम्हें चुन लिया, सारा जहां रहने दिया। अगली मुलाकात होगी और बहुत खूबसूरत, इस उम्मीद के साथ कि आप वो हैं जिसे लोग कहते हैं चौधरी का चांद। ठीक है, इस बहुत खूबसूरत नगमे के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हंसते गाते मुस्कुराते हुए इस जुम्मे से लेकर अगले जुम्मे और ऐसे ही ता उम्र मुस्कुराहट को जाने मत दीजिएगा। शब खैर, बाय बाय।

आकाशवाणी दिनभू पर अब प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 3300 फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आज भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। उड़ीसा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई। राहत बचाव कार्यों में तेजी। आकाशवाणी आइजोल ने अपनी हीरक जयंती मनाई। राज्य के सूचना और जनसंपर्क मंत्री बी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने आज 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या बिश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए, वहीं अवंशिका और तानिया ने कांस्य पदक अपने नाम किया। ये थे अब तक के रेनबो मुख्य समाचार।

0: तरह का सॉन्ग हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

नए पुराने। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

नमस्कार, रात्रि के 1 बजे है। प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर युवाओं से अभद्र भाषा और नफरत से दूर रहने की अपील की। प्रधानमंत्री ने जंतर मंतर प्रदर्शन की हाल की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि वे इस दौरान उनके खिलाफ इस्तेमाल की हुए अपशब्दों के लिए बच्चों को माफ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आज भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर हुई, राहत बचाव कार्यों में तेजी। राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने बधाई दी। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने आज 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए। वहीं अवंशिका और तान्या ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। स्वागत है आपका सुहानी रात कार्यक्रम में।

बागों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो।

0: या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को माफ किया। सोशल मीडिया संदेश जारी कर युवाओं से गलतियों से सीखने, अपने सपनों को पूरा करने और देश की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कल भूटान की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने बधाई दी। अजरबैजान के बाकू में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की महिला पहलवानों ने 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। संध्या विश्नोई और अक्षरा ने अपने अपने वर्ग में रजत पदक हासिल किए, वहीं अवंशिका और तान्या ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो। सुनवाते हैं आपको कुछ ऐसे नगमे जो भुलाए ना बने।

अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती,

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को माफ किया। सोशल मीडिया संदेश जारी कर युवाओं से गलतियों से सीखने, सपनों को पूरा करने और देश की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने

मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित 33 सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी। अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भी अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल भूटान में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडोलोविच कल से 5 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकी हमले में एक मजदूर की मौत जबकि एक अन्य घायल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। वहीं यामिनी मौर्य ने जूडो की महिला 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस जीत के साथ भारत के पदकों की संख्या 20 हुई जिनमें 5 स्वर्ण 11 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो मिडनाइट मेलोडीज में आपका स्वागत है।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

आज हमको तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे।

सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश

में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

नमस्कार, आकाशवाणी रेनबो से प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। आंध्र प्रदेश में भोगपुरम स्थित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले बच्चों को माफ किया। सोशल मीडिया पर संदेश जारी कर युवाओं से गलतियों से सीखने, सपनों को पूरा करने और देश की प्रगति में भागीदार बनने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में केंद्र सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को तलब किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों सहित तैरते सौर फोटोवोल्टेक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। योजना पर 5,070 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दी। इसके लिए अगले 5 वर्षों में 84,084 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को भी मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली। इसके अलावा 36,441 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों

को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल भूटान में भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की पांचवी बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में 332 करोड़ रुपए की लागत वाली 12 नई विकास परियोजनाओं की मंजूरी दी गई। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओडलोविच कल से 5 अगस्त तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में कल आतंकी हमले में एक मजदूर की मौत जबकि एक अन्य घायल। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस हमले की निंदा की। इस हमले की निंदा करते हुए आतंकवादियों के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने इतिहास रचते हुए पहली बार जूडो में स्वर्ण पदक जीता। वहीं यामिनी मौर्य ने जूडो की महिला 57 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसी के साथ मुख्य समाचार समाप्त हुए।

0: आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, सारे गामा में आपका स्वागत है।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
2: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।